0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سپہر کے 3 بج چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ, اور آج جمعہ ہے جبکہ جون کی 12 تاریخ ہے. نشریات میں کیا کچھ شامل ہے اس حوالے سے بات کریں تو ہفتہ رفتہ موجود ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں سوال ہوگا کہ بچوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں بات کیسے کی جائے. ٹیکس ریٹرنز کے گوشوارے بھرتے ہوئے کیا خیال رکھنا ضروری ہے, یہ بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز کے علاوہ بھی اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہلچل ہے, یہ تفصیل بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ اس ہفتے دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں 12 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر منصوبہ بند فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں, دعویٰ کرتے ہوئے کہ تہران کے ساتھ اعلی سطحی مذاکرات کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کہ ایک وسیع تر علاقائی معاہدہ قریب ہے. یہ اعلان صرف چند گھنٹے بعد سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر بہت سخت حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور خبردار کیا تھا کہ امریکہ ایران کی کلیدی تیل برآمدی سہولیات پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. امریکہ کی طرف سے منصوبہ بند حملوں کی منسوخی سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ اپنی دھمکیاں عمل میں لائے گا تو تہران جواب دینے کے لیے تیار ہے. ادھر گرینز کے سینیٹر جارڈن سٹیل جون کا کہنا ہے کہ اس ہفتے این ڈی آئی ایس میں اصلاحات کے حکومتی بل کے بارے میں سینٹ کی انکوائری کی سماعتوں سے ایسی گواہی سامنے آئی ہے جو اسے ختم کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے. حکومت کے بل میں ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کے تحت اگلے 4 سالوں میں 300,000 افراد کو اسکیم سے ہٹا دیا جائے گا یا اس تک رسائی سے روک دیا جائے گا. سینیٹر سٹیل جون کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پیش کیے گئے شواہد بل کو ترک کرنے کے لیے ایک مضبوط کیس بناتے ہیں. ادھر برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے آسٹریلین وزیر دفاع رچرڈ مارلس کے ساتھ آکس دفاعی شراکت داری کے لیے اہم پورٹ ساؤتھ نیول بیس پر پریس کانفرنس کرنے سے کچھ دیر قبل استعفیٰ دے دیا ہے. رچرڈ مارلیز اور وزیر خارجہ پینی واگ آکمین کے نام سے مشہور سالانہ 2 طرفہ ملاقاتوں کے لیے برطانیہ میں ہیں. رچرڈ مارلیز کا کہنا ہے کہ وہ جان ہیلی کے ساتھ قریبی اور باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات کی قدر کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات دیرپا ہیں, گہرے روابط اقدار اور مشترکہ مفادات ہیں. برطانیہ کی حکومت کے لیے ایک ہنگامہ خیز وقت ہے. دفاعی اخراجات سے متعلق خدشات پر اراکین پارلیمنٹ نے استعفیٰ دیا ہے. وزیر دفاع جان ہیلی کے مستعفی ہونے کے چند گھنٹے بعد مسلح افواج کے وزیر الکارنس نے بھی استعفیٰ دے دیا. برطانوی وزیر دفاع وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ شدید خطرے کے وقت ملک کے دفاع کے لیے درکار سرکاری وسائل کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. दूसरी जानिब कांस का कहना है कि ये वाजे है वो जिस महकमे के लिए जोर दे रहे हैं इसमें तब्दीलियां नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने बतौर वजीर इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस्तीफों से बरतानवी वजीर आजम पर दबाव बढ़ा है, जब गुज़िश्ता माह वेस स्टेरिंग के वजीर सेहत के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पहले ही मुमकिन क़यादत के लिए चैलेंज का सामना है। इधर एक शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उसने मुबैना तौर पर एक गवाह को जारहाना ईमेल्स की एक सीरीज भेजी थी जो यहूद दुश्मनी और समाजी हम आहंगी पर रॉयल कमीशन में पेश हुआ था। ईमेल के बारे में तहकीकात करने वाली पुलिस का कहना है कि उन्हें हथियार धमाके खेज मवाद बनाने की हिदायत और एडोल्फ हिटलर की किताब मैन कैम्फ की एक कॉपी 59 साल शख्स के शुमाली न्यू साउथ वेल्स के घर से मिली है। उस शख्स पर कैरिज सर्विस को धमकी देने, हिरासा करने या जुर्म का सबब बनने के 4 इल्जामात, एक गवाह को धमकाने और ममनुआ हथियार रखने का इल्जाम आयद किया गया है। जुर्म साबित होने पर उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद हो सकती है। उधर बेलफास्ट के रिहायशी इलाके में एक रात के बाद इमिग्रेशन मुखालिफ तशद्दुद के बाद घरों और गाड़ियों को जला दिया गया है। नकाबपोश अफराद ने कारों को नसरे आतिश किया और खानदानों को उनके घर से निकाल बाहर किया। शुमाली बेलफास्ट में बयाना तौर पर एक सूडानी शहरी की तरफ से किए गए चाकू के हमले के बाद तशद्दुद फूट पड़ा जिसमें एक शख्स की आंख जाया हो गई। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में एक 30 साल शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला किया और गाड़ियों को आग लगा दी और तशद्दुद पर काबू पाने के लिए 200 इजाफी अहलकार तैनात किए जा रहे हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न टेरिटरी में नौजवानों के दोबारा जराइम की शरह को फिलहाल नापा नहीं जा रहा है। इसके बावजूद नॉर्दर्न टेरिटरी की हुकूमत ने अपने सख्त ऑन क्राइम एजेंडे की कामयाबी को फरोग दिया है। 2024 में इकतदार में आने के बाद से मुल्क की लिबरल हुकूमत ने जराइम को कम करने के लिए नए कानून का एक सिलसिला मुतारफ कराया है। सख्त नए जमानती कवानीन और मुजरमाना जिम्मेदारी की उम्र को 10 साल तक कम करने समेत बालिग मुजरमों के लिए दोबारा जुर्म करने की शरह तकरीबन 60% पर कोई तब्दीली नहीं की गई क्योंकि जेलों की तादाद रिकॉर्ड बुलंदी तक पहुंच गई है। लेकिन वजीर बराए तसीम मैथ्यू वर्ली ने टेरिटरी तखमीनों में सवालात के दौरान इस बात की तस्दीक की है कि इस बात का तायुन करने के लिए कोई नया डेटा मौजूद नहीं है कि आया नौजवानों के जुर्मों में तादादी लिहाज से कोई बेहतरी आई है या नहीं। उधर न्यू साउथ वेल्स की पुलिस की वजीर यास्मीन कैटली का कहना है कि रियासती हुकूमत पुलिस फोर्स में जायजे के इंतखाबात को संजीदगी से ले रही है और जब फोर्स सकाफती तब्दीली से गुजर रही है तो मदद फराहम की जाएगी। साबिक विक्टोरियन मसावी मवाक़े और इंसानी हुकूक कमिश्नर क्रिस्टिन हेल्टन की सरबराही में वसी पैमाने पर किए गए जायजे में रियासत की पुलिस फोर्स में जबरदस्त जिंसी हिरासानी और इम्तियाजी सलूक का कल्चर सामने आया है। हर वो शख्स जिसने जायजे में बात की उसने अपने सर्विस के दौरान किसी भी वक्त खुले या छुपे हुए अंदाज में जुन्सी तौर पर हिरासा किए जाने या बेइज्जत किए जाने के तजर्बात को बयान किया। मौजूदा कमिश्नर मॉल लेनन ने जायजे की तमाम 29 सिफारिशात को कबूल कर लिया है। इधर विक्टोरियन हुकूमत का कहना है कि उसने साल 2024 में घरेलू झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत की तहकीकात करने वाली कॉर्नियल इंक्वायरी की ज्यादातर सिफारिशात को कबूल कर लिया है। क्रोनर साइमन मैकग्रेगर की सिफारिशात में बंदूक के मालिकान को लाइसेंस हासिल करते वक्त अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कराने का मुतालबा किया गया है। एलन हुकूमत का कहना है वो लाइसेंस के पूरे दौर में निगरानी को मजबूत बनाने और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक रास्ता कायम करने पर गौर करेगी कि जब किसी की सेहत लाइसेंस के लिए अनफिट है तो वो कैसे असरअंदाज हो सकता है। लेकिन ये कैनली की फ्री लाइसेंस होल्डर के लिए 4 बंदूकों की कैप की सिफारिश को कबूल नहीं करता। प्रीमियर जसिंडा एलन ने कहा कि किसी भी नई पाबंदी से कानून की पासदारी करने वाले बंदूक के मालिक पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ेगा। उधर ट्रेजर जिम चालमर्स का कहना है कि विफाकी हुकूमत पिछले महीने के बजट में कैपिटल गेन टैक्स की तब्दीलियों से मुतालिक स्टार्टअप्स के लिए किसी न किसी तरह के हल पर कायम करेगी। जुमेरात के रोज मॉर्गन स्टेनले ऑस्ट्रेलिया समिट से खिताब करते हुए जिम चार्मर्स का कहना था कि वो स्टार्टअप्स के मखसूस चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं और वो जल्द ही एक पॉलिसी पेपर जारी करेंगे जिसमें उनके मुजवजा काम के बारे में राय तलब की जाएगी। जायदाद के सरमायाकारों के लिए टैक्स में छूट वापस लेने के लेबर के फैसले को कारोबार निस्बतन कबूल कर रहे हैं, लेकिन हिस्स की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की रियायत में तब्दीलियों को उन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है जो कहते हैं इससे कारोबारी सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी और पैदावारी तरक्की को महदूद किया जा सकता है। उधर चीन में तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज PNSM हंगोर कराची पहुंच गई है। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। हंगोर क्लास आबदोज जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम्स, स्टेल्थ डिजाइन और जेरियाब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। याद रहे, एक माह कबल पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिशनिंग की तकरीब हुई थी। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा ख़तरा है। यह आबदोजें बहरे अरब में अहम समंदरी तजारती गुजारगाहों के सलामती को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। सामईन, आप सुन रहे थे जुमा 12 जून 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ फरदा वकार। जी सामईन, हफ्ता रफ्ता सुनने के बाद ये याद दहानी ज़रूरी है कि SBS उर्दू की बराहे रास नशरियात हर बुध और जुम्मे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक 3:00 साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर 6:00 और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू मौजूद है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, देख सकते हैं आप SBS उर्दू। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के प्रोग्राम्स, अपनी पसंद के सेगमेंट्स और अपनी पसंद की वीडियोज़ अपनी पसंद के अवकात में देखिए। और इसके साथ ही नशरियात में शामिल करते हैं एक गीत, आपको सुनवाते हैं मेरी ज़िंदगी है तो, आसिम अज़हर की आवाज़ में।

और सामईन, इसके साथ वक्त हो रहा है कि हम चलें नशरियात के पहले कमर्शियल ब्रेक की जानिब, लेकिन जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू रहेगी कि बच्चों और नौ उम्रों से

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: शुक्रवार 12 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बात है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ मुद्दों की. सिडनी के दूसरे हवाई अड्डे की भी बात करेंगे और मुलाकात करेंगे OMM से सम्मानित एक भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ. भारत की रिपोर्ट के साथ कुछ गाने भी होंगे और आज गाने चुने हैं 80 के दौर के. आपको क्या लगता है, क्या कोई खास बदलाव आया था उस दौर में? क्या सोचते हैं आप? और हाँ, आपको देने के लिए आज मेरे पास है मेलबर्न में होने वाले नाटकों के डबल पास भी, उसकी जानकारी आगे देती हूँ. और आप मुझे बताइएगा कि 80 के दौर में क्या कोई खास बदलाव आया था बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया में? आप इस बारे में सोचिए और मुझे बताइए 0439-799-767 पर. और अभी न्यूज़ फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 12 जून के लिए यह है न्यूज़ फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार. केंद्र सरकार का कहना है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली के त्यागपत्र का ऑकस पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. केंद्रीय उद्योग और इनोवेशन मंत्री टिम आयर्स का कहना है कि मंत्रियों में बदलाव के बाद भी ये व्यवस्था बनी रहेगी क्योंकि इसे जारी रखना तीनों देशों ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के हित में है. हीली के जाने की घोषणा एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स भी शामिल होने वाले थे. कोलिशन नेता एंगस टेलर का कहना है कि ये घटनाक्रम केंद्र सरकार के लिए एक झटका है और इससे ऑस्ट्रेलिया की रक्षा सेना में खर्च पर नए सिरे पर विचार करना चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा करने के बाद कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए एक डील पर जल्द ही साइन हो सकते हैं, यूएस स्टॉक्स 2 महीने में सबसे अच्छे दिन पर हैं और तेल की कीमतें गिर गई हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सप्ताहांत में यूरोप में एक साइनिंग सेरेमनी होगी जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल होंगे. ऑस्ट्रेलिया ने यूके और कनाडा के साथ मिलकर एक पीस फंड लॉन्च किया है जिसका मकसद इजराइल फिलिस्तीन के लिए दो देशों वाले सोल्यूशन को सपोर्ट करना है. हर देश इस पहल में 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर देगा जो ज़मीनी स्तर के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा जिसमें यूथ ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी संगठन शामिल हैं. आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर श्रोताओं को सलाह कि अगला समाचार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मृत है. इंडिजिनस एजुकेशन और लीडरशिप के सपोर्टर प्रोफेसर पीटर बक्सिन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जा रहा है. साउथ ऑस्ट्रेलिया के यॉर्क पेनिनसुला के एक गर्वित नारुअंगा व्यक्ति ने कम्युनिटी के नेतृत्व वाली और कल्चर पर आधारित लर्निंग की बात की और फर्स्ट नेशन एजुकेशन का माहौल बदल दिया. 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने एक टीचर के तौर पर काम किया, फिर राज्य और फेडरल सरकार दोनों में सीनियर एग्जीक्यूटिव भूमिकाओं में काम किया. साथ ही नेशनल एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर एजुकेशन कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन भी रहे. भारत बांग्लादेश ने सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में हुई बैठक में सीमा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई जिसमें घुसपैठ से लेकर मौतों तक के मुद्दे शामिल हैं. NDTV से मिले समाचार के अनुसार 8 से 11 जून तक दिल्ली के BSF मुख्यालय में चली भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय वार्ता के दौरान बॉर्डर से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनी. संयुक्त गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, रियल टाइम सूचना साझा करने, सीमा पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने को लेकर भी दोनों देशों के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एकजुटता दिखाई। और फुटबॉल की बात करें तो वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के पहले दिन साउथ कोरिया ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चेक रिपब्लिक पर 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की। सब्स्टिट्यूट ओ हुन यू ने 80वें मिनट पर आखिरी गोल किया। इससे पहले को-होस्ट मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका पर 2-0 से जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। साउथ अफ्रीका और मेक्सिको के बीच वर्ल्ड कप का पहला खेल जिस स्टेडियम में हो रहा था उसके बाहर पुलिस से भिड़ने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सड़क बंद होने के बावजूद कम से कम 5 अलग अलग प्रोटेस्ट ग्रुप स्टेडियम में जमा हो गए थे। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात करते हैं उन बड़े मुद्दों की जो इस फीफा वर्ल्ड कप इसकी कहानी को सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहने दे रही, बल्कि नई तकनीक का बढ़ता असर, टिकटों की बढ़ती कीमतें जो फैंस की पहुंच को चुनौती दे सकती हैं, और मेजबान देशों से जुड़ी मानवाधिकार चिंताएं जो लगातार चर्चा में हैं, और इन मुद्दों पर प्रकाश भी डल रहा है। तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो आप तक लाई हैं भव्या पांडे।
3: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ, और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं 2026 फीफा विश्व कप से जुड़े उन मुद्दों की जो मैदान के खेल से आगे जाकर इस टूर्नामेंट की दिशा और छवि को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें शामिल है टेक्नोलॉजी और VAR का बढ़ता प्रभाव, टिकटों की कीमतों में बदलाव, प्रसारण अधिकारों की जटिलताएं और मेजबान देशों में उठ रही मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स संबंधी चिंताएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस VAR और फुटबॉल की नई तकनीकी दुनिया की। फीफा 2026 को अब तक का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वर्ल्ड कप बताया जा रहा है। इस बार खेल को सिर्फ रेफरी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर और डेटा सिस्टम भी लगातार मॉनिटर करेंगे। इन तकनीकों में शामिल हैं सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट सिस्टम्स, मैच बॉल में लगे सेंसर, AI आधारित खिलाड़ी ट्रैकिंग और रियल टाइम ब्रॉडकास्ट एनालिटिक्स। इन सभी का उद्देश्य है निर्णय प्रक्रिया को तेज और अधिक सटीक बनाना।
4: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there, and then the whole chip inside the ball to track every touch, every motion, and that the whole analytics around the viewing experience for the fans and for the broadcasters, because more than 45 cameras will be in use.
3: मैच बॉल में मौजूद सेंसर ये पहचान सकेगा कि गेंद को किस क्षण छुआ गया, जिससे ऑफसाइड जैसी सिचुएशंस में फैसला करने में मदद मिलेगी। इसका असर सीधे रेफरी के निर्णयों और VAR सिस्टम पर पड़ेगा। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने इस तकनीकी बदलाव को लेकर कहा,
5: With AI enabled 3D players avatars, we are introducing precise player identification and tracking, which means great images, faster decisions by the referees, and a clear understanding by everyone.
3: हालांकि ये तकनीकी प्रगति जितनी तेज है उतनी ही तेज इसके खिलाफ बहस छिड़ गई है। VAR के आने के बाद से ही फुटबॉल समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष का मानना है कि इससे गलत फैसलों में भारी कमी आई है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि इससे खेल की स्वाभाविक गति और भावनात्मक प्रवाह यानी नेचुरल फ्लो टूट जाता है। कई पूर्व खिलाड़ी और प्रशंसक ये भी मानते हैं कि गोल या फाउल के बाद लंबे समय तक चलने वाली समीक्षा प्रक्रिया दर्शकों के अनुभव को प्रभावित करती है। यानी सवाल सिर्फ तकनीक का ही नहीं बल्कि फुटबॉल के साथ जुड़ी फैंस की भावनाओं का भी है। बात करें प्रसारण की तो विश्व कप केवल मैदान पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट नहीं, ये एक वैश्विक मीडिया इवेंट भी होते हैं। लाखों करोड़ों दर्शक इसे टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। हालांकि 2026 से पहले भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों में ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी प्रसारण अधिकारों को लेकर अनिश्चितता बनी रही है। भारत में लंबे समय तक बातचीत के बाद जी एंटरटेनमेंट ने 39 फीफा इवेंट्स के प्रसारण अधिकार हासिल किए जो 8 वर्षों तक लागू रहेंगे। चीन में चाइना मीडिया ग्रुप ने अगले 4 विश्व कपों के अधिकार 2031 तक सुरक्षित कर लिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर फुटबॉल प्रशासन से जुड़े शाजी प्रभाकरण बताते हैं,
4: द वर्ल्ड कप राइट्स फॉर इंडिया इट टुक बिट लॉन्ग बट देन वंस अनाउंसमेंट केम देयर इज कंप्लीट रिलीफ अमंग द फैंस एंड आई एम श्योर दिस पार्टनरशिप व्हाट फीफा हैज found in G, definitely will add value to Indian football as well.
3: उनका ये भी कहना है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवा दर्शकों में। जहां पहले हमें सिर्फ क्रिकेट का दबदबा देखने को मिलता था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फुटबॉल भी बड़ी संख्या में फैंस तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया,
4: In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, yeah, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they had a very great start beating Argentina and they were the first in terms of the non-participating country.
3: ये बयान दिखाता है कि भले ही भारत में राष्ट्रीय टीम विश्व कप में नियमित रूप से हिस्सा न लेती हो, लेकिन दर्शक संख्या और जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इन मैचों की टिकट्स किस तरह से हासिल होती है। 2026 विश्व कप की एक और बड़ी चर्चा टिकटों की कीमतों को लेकर हो रही है। इस बार पहली बार पुरुष विश्व कप में डायनामिक प्राइसिंग मॉडल अपनाया गया है। इस प्रणाली में टिकटों की कीमतें मांग यानी डिमांड और उपलब्धता यानी सप्लाई के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैच करीब आते हैं और मांग बढ़ती है, कीमतें भी तेजी से बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि कई मैचों के टिकट 2022 कतर विश्व कप की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई मैचों के टिकट सैकड़ों डॉलर से लेकर 1000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से भी अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। ये बदलाव खासकर सामान्य दर्शकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है, जो पहले विश्व कप को एक बार जीवन में मिलने वाला अनुभव मानकर योजना यानी अपना प्लान बनाते थे। फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है,
5: इफ सम पीपल पुट ऑन अ सेकेंडरी ऑन अ रीसेल मार्केट सम टिकट्स फॉर द फाइनल एट $2 million, number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy these tickets. Actually, if somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a coke to make sure that he has a great experience.
3: वहीं फीफा का कहना है कि टिकट बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू वैश्विक फुटबॉल विकास में पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे छोटे देशों और युवा खिलाड़ियों को भी लाभ मिलता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स और पूर्व अधिकारी इस मॉडल को लेकर सतर्क हैं। शाजी प्रभाकरण ने भी कहा है कि बढ़ती लागत, यात्रा, आवास और टिकट की प्राइसिंग कई प्रशंसकों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है।
4: There are people going. Definitely, this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55k from India who traveled for the World Cup. Definitely, will not be an insignificant number. There will be quite a lot of people traveling that I know because definitely the costs are high, but the people are having high disposable income.
3: उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि 2022 कतर विश्व कप की तरह इस बार इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय दर्शक यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो होस्ट कंट्रीज होती हैं, उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। खेल के साथ साथ अब विश्व कप मानवाधिकार बहसों का भी मंच बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के अभियानकर्ता जाकी हैदरी ने अमरीका में चल रही आवर्जन नीतियों यानी इमिग्रेशन पॉलिसीज और कानूनी व्यवस्था के कड़े प्रवर्तन को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बड़े खेल आयोजनों के दौरान सभी दर्शकों, पत्रकारों और प्रतिभागियों को सुरक्षित

0: SBS South Asian.
1: Your news from here.
0: And hits from home.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Fearful of going and watching and celebrating a game because of their race, gender identity or their visa status.
4: वहीं दूसरी ओर फीफा का कहना है कि उसकी नीतियां जीरो टॉलरेंस पर आधारित हैं और वे भेदभाव, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो 2026 फीफा विश्व कप केवल खेल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, मीडिया और राजनीति का एक वैश्विक संगम बनता जा रहा है। VAR और AI से लेकर टिकटों की कीमतों और ह्यूमन राइट्स की बहस तक हर मुद्दा ये दिखाता है कि आधुनिक फुटबॉल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रह गया है। तो ये टूर्नामेंट जितना खेल के लिए याद किया जाएगा उतना ही उन चर्चाओं के लिए भी जो खेल से बाहर हो रही है। दोस्तों, हम विश्व कप से पहले एक और विशेष एपिसोड के साथ वापस आएंगे जिसमें हम टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ियों से क्या उम्मीद की जा सकती है इस पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप डेली द 90 प्लस पॉडकास्ट पर ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। वर्ल्ड कप की नवीनतम खबरों के लिए SBS न्यूज हेडलाइंस सुनिए जो आपके पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आए भव्या पांडे।
5: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी और आपको कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था कि हम मेलबर्न में नाट्य दर्पण द्वारा आयोजित कुछ नाटक जो हो रहे हैं उसकी हम आपको डबल पास दे रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दूं कि नाट्य दर्पण की तरफ से प्रस्तुति हो रही है 20 जून शनिवार 20 जून को चैंडलर थिएटर में। समय रहेगा 1 बजे का और आप देख सकेंगे 2 नाटक एक ही सेशन में। जी हाँ, नाटक है शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड। तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, बस आपने अपना नाम भेजना है, अपना ईमेल एड्रेस भेजना है और बताना है कि क्या आप नाटक देखना चाहते हैं और क्यों, किस लिए आपको नाटक देखने का शौक है। और अगर आप चाहें तो कुछ और भी आप उसके बारे में जानकारी हमें दे सकते हैं। आपके नाम ड्रॉ में जाएंगे और उसके बारे में और जानकारी भी कार्यक्रम में मैं आगे दूंगी। अभी समय हुआ है एक अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद।
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: SBS Audio.
13: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
14: यही जाओ डालिया, चुनबे हालों में।
15: SBS Chill. Chill.
16: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
17: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
18: SBS Hindi उप

0: उपलब्ध करवाता है
1: Far from the partisan politics
0: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें या फिर
2: sbs.com.au/audio
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपने कार्यक्रम में पहले फीफा के मुद्दे से जुड़े कुछ बातें सुनी और मैं आपको बताने जा रही थी कि कुछ हम बातें चाह रहे हैं, यानी नाट्य दर्पण की तरफ से हम आपको एक नाटक के लिए आपको वो भी दे रहे हैं, गिव अवे पास कर रहे हैं। तो आपसे जानना ये चाह रही थी कि क्या आप नाटक देखना चाहते हैं और उस नाटक में आपको, जब आप नाटक देखने जाते हैं तो आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, तो इन सब के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास, आपको देने के लिए मेरे पास हैं नाटक के पासेस। नाट्य दर्पण की तरफ से दो नाटक दिखाए जाएंगे 20 जून को और उनके नाम हैं शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड और पहला नाटक है शादी सिलेबस। दोनों ही नाटक जो हैं एक ही सेशन में दिखाए जाएंगे 20 जून चैंडलर थिएटर में है, 1 बजे से शुरू होगा। तो ये मेलबर्न के लिए है, तो मेलबर्न के श्रोताओं से मैं चाहूँगी कि आप अपने संदेश भेजें मेरे को और अपनी राय भेजें कि नाटकों के बारे में आप क्या सोचते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताने जा रही थी कि आज जो गाने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए उनमें हैं 80 के दशक के गाने। तो 80 के दशक के गानों की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या ऐसा बदलाव आप देखते हैं, क्या कोई बदलाव आया था 80 के दशक में, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। और ये भी जानना चाहती हूँ कि किस चीज़ से आप 80 के दशक को जोड़ पाते हैं, यानी वो जो संगीत था उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में भी आप से मैं जानना तो चाहूँगी ही। यानी आप ये सोचिए कि मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाह रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने जो संदेश हैं उन्हें आप मेरे पास भेजेंगे। तो आगे कार्यक्रम बढ़ाने से पहले भारत की रिपोर्ट तो मैं आपको सुनवाना चाह रही थी, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, तो भारत की रिपोर्ट मैं आपको इस अंतराल के बाद सुनवाती हूँ और उम्मीद करूँगी कि इस बीच में आपके संदेश मेरे पास आते रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: SBS Food के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS Food पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें। साथ ही How to Lake, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
2: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, भारत से रिपोर्ट बहुत जल्दी ही आप तक आएगी, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं ये एक गाना भी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये गाना पसंद आएगा। और मैं बात कर रही थी कि आज के गाने हैं 80 के दशक के, तो आप बताइएगा कि 80 के दशक में ऐसी क्या खास बात थी। सुनते चलते हैं ये गाना।

0: और आइए श्रोताओं, चलते हैं भारत की तरफ और वहां की रिपोर्ट जानते हैं हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ।
1: फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज कहते हैं,
2: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी ट्रैवलिंग टू एवियन फ्रांस टू पार्टिसिपेट इन द 52nd G7 समिट व्हिच इज टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 टू 17 जून where India has been invited as a partner country. The visit will provide an opportunity for the Honorable Prime Minister to engage with the world leaders present at the G summit on issues of importance to India as well as to the global south. This will be India's 13th participation at the G7 summit and Prime Minister Mr. Modi's 7th consecutive participation at the summit. On 16 and 17 June, the days dedicated to outreach sessions of the G7 summit, the Prime Minister will participate alongside other invited countries.
1: 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 में भारत को साझेदार देश के रूप में आमंत्रण मिला है। बैठक के दौरान चर्चा के विषयों पर बताते हुए सीबी जॉर्ज ने कहा,
2: The discussions will broadly cover focus on the renewal of international partnerships and development solidarity, fostering shared and balanced growth, and effective and efficient rollout of artificial intelligence. India's regular participation at the G7 summits reflects the increasing recognition of India's role and contributions in addressing global challenges relating to peace, security, development and environmental sustainability.
1: G7 के इतर भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन संयुक्त रूप से नीस में भारत इनोवेट्स पहल का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव इस बारे में बताते हैं।
3: ड्यूरिंग द विजिट टू नीस प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस विद प्रेसिडेंट मैक्रॉन covering full range of areas of our partnership as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Bharat Innovates is a landmark initiative that showcases India's innovation journey to a global audience. Our startup ecosystem, deep tech startups, our digital public infrastructure, our advances in defense, space and clean energy, and contributions of Indian talent to global technology.
1: ईरान के विरुद्ध जारी अभियान के दौरान अमेरिका ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर भी हमला बोला है। इसमें 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस हफ्ते ओमान की खाड़ी में इन जहाजों पर हुए हमलों पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 मौतों की पुष्टि करते हुए कहा,
4: जो वहां पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए, इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमरीकी CDA को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपनी प्रतिरोध अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है और इससे हम लोग कई एक भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए
1: हैं। असम और नागालैंड के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में तेल एवं गैस के संचालन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। गुरुवार को हुए इस ऐतिहासिक समझौते में केंद्र सरकार भी शामिल है। इस त्रिपक्षीय समझौते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
5: ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी हैं, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है, परंतु दोनों राज्यों ने कहा, ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है।
1: नागालैंड में तेल, गैस और खनिज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसके जरिए विदेशी निर्भरता कम की जा सकती है। अमित शाह ने इसका उल्लेख करते हुए कहा,
5: पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने मतभेदों को तुरंत दूर करने का भरोसा दिलाया।
6: दिस एग्रीमेंट इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस एंड इंडिया इज इम्पोर्टिंग हाइड्रोकार्बन एट मच हायर रेट्स कॉजिंग ट्रिमेंडस हार्डशिप टू द पीपल। आई एम श्योर दैट दिस अरेंजमेंट ऑन हाइड्रोकार्बन will be implemented in letter and spirit as assured by honorable chief minister of Nagaland. I can reiterate that Assam will also cooperate in the implementation of this agreement. Whenever there will be some dispute regarding the area of interest, we both will sit and will resolve it amicably.
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी से नेताओं ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। 80 में से 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग गुट बना लिया है। वहीं लोकसभा के कई सांसद इसी राह पर चल निकले हैं। लोकसभा में 28 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस के कितने सांसद अभी बागी हुए हैं, इसको लेकर परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। वैसे 2/3 सांसदों के एक साथ टूटने पर उनकी सांसदी बची रहेगी। इस बीच राज्यसभा के 13 में से 4 सांसदों ने पार्टी और राज्यसभा से अपना त्याग पत्र दे दिया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो श्रोताओं, आपने भारत से ये रिपोर्ट सुनी और नाटक हमारे श्रोताओं की पसंद है उसका पता मुझे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास में संदेश तो आ ही रहे हैं। नाम अभी तो नहीं बता सकती, आप सबके नाम ड्रॉ में जाएंगे ही। और हाँ, मैं आपसे जानना चाहती थी कि 80 के दशक के संगीत में ऐसी क्या खास बात है या क्या कोई बदलाव महसूस हुआ। चलिए उसके बारे में भी सोचकर आप मुझे अपने संदेश अवश्य भेजें 04397997667 पर। और आइए अब बात करते हैं कि सिडनी में जो दूसरा एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, ये खुलने जा रहा है 25 अक्टूबर को, और कह सकते हैं कि अधिक उड़ानें होंगी, बेहतर सुविधाएं हैं और नए अवसर हैं। तो क्या खास है इस एयरपोर्ट में और सिडनी के निवासी इस विकास को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में आपके लिए लाई हैं भव्या पांडे।
7: दशकों से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और वेस्टर्न सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आधिकारिक रूप से रविवार यानी 25 अक्टूबर को आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। ये सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, ये सिडनी की हवाई यात्रा व्यवस्था यानी एयरवे सर्विसेज में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र की उड़ानों और यात्रियों के एक्सपीरियंस को ही बदल सकता है। इस नए एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान 25 अक्टूबर को भरेगी। जेटस्टार की एक फ्लाइट गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगी, जो इस आधुनिक एयरपोर्ट की मेडन वॉयेज यानी पहली उड़ान होगी। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टिकट बुधवार से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को अगले साल की यात्रा के प्लान्स बनाने का मौका मिलेगा। जेटस्टार और क्वांटस इस एयरपोर्ट से संचालन शुरू करने वाली पहली दो बड़ी एयरलाइंस होंगी। जेट स्टार अक्टूबर से ही यहां से मेलबर्न, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के लिए हफ्ते में 21 फ्लाइट्स चलाएगा। वहीं क्वांटस मार्च 2027 के अंत से मेलबर्न और ब्रिस्बेन के लिए 8 साप्ताहिक सेवाएं शुरू करेगा। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से सिडनी के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों पर दबाव कम होगा और ट्रैवलर्स को बेहतर विकल्प यानी ऑप्शंस मिलेंगे। आइए जानते हैं सिडनी निवासी वंशिका नालवा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है।
8: Of course, I feel like जो main existing Sydney का airport है उस पे lesser pressure होएगा and potentially it will be a smoother traveling experience as well. Also, ज़्यादा domestic flights, जहाँ तक मैंने सुना it is mostly for domestic flights and in future they'll consider the international one. So flights भी ज़्यादा हो जाएंगी in comparison to अभी जहाँ पे है ना एक ही international airport है तो उधर to and fro ज़्यादा है. Also, operations, again, greater flexibility. I feel like more flights, more timings, hana, jada options rahenge for travelers as well. I think would be a positive impact on the job market as well, would provide jobs to people who are in aviation, logistic retails, etc., etc.
7: ऐसा ही कुछ कहना है एक और सिडनी रेसिडेंट का। मयंक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक अलग पहलू हमारे सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके जैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा।
9: या ऑफ कोर्स इट्स अ रियली गुड थिंग कि एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, सबका ट्रैवल टाइम बच रहा है, वेरी इजी हो जाएगा क्योंकि सिडनी में अभी एक ही एयरपोर्ट है एंड सेकंड वाला बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों को, लाइक 2 hours ऑफ ट्रैवल बचेगी इस चीज से, प्लस इतने स्टेट में इजी हो जाएगा तो लाइक डिस्टेंस बचेगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, तो काफी सारे फायदे हैं। प्लस सिडनी एंड ऑल इस साइड ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत फायदा होगा, नई जॉब्स मिलेंगी। या आई वुड से कि इट इज रियली गुड टू हैव अनदर एयरपोर्ट।
10: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the entire crew, I'd like to welcome you aboard flight 237 with non-stop service to New York.
7: आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि सिडनी के मौजूदा किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट की तरह ही ये एयरपोर्ट रात को भी बंद नहीं रहेगा। ये एयरपोर्ट क्रू फ्री होगा, यानी यहाँ से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी उड़ाने संभव होंगी। इसका मतलब है कि ट्रैवलर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और एयर ट्रैवल पहले से कई ज्यादा सुविधाजनक और कंफर्टेबल हो जाएगा। वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट के CEO साइमन हिकी ने कहा है कि ये एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी के लोगों के लिए एक नई आजादी जैसा है, जहां वे बिना समय की पाबंदी के देश भर में यात्रा कर सकेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ये लॉन्च वेस्टर्न सिडनी के पूरे ग्रेटर सिडनी एरिया के भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट शुरुआत में सालाना करीब 10 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, लेकिन इसकी योजना यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य में इसकी क्षमता 82 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाने की तैयारी है, जो इसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जैसे बड़े वैश्विक हब के स्तर पर ले जाएगा। वंशिका का कहना है कि इस एयरपोर्ट के बनने के साथ मुख्य किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट पर जो प्रेशर होता था वो कम हो जाएगा और ये जो एयरपोर्ट है ये कई यात्रियों के लिए मेन एयरपोर्ट से पास पड़ेगा।
8: पर्सनली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से द एयरपोर्ट इज ओपनिंग समवेयर नियर पेनरिथ एंड राइट नाउ आई लिव समवेयर नियर पैरामेटा, तो इट वुड बी अ 30-minute ट्रेन राइड एंड बाय कार मे बी 40-45 minutes, सो नॉट दैट फार इन कंपैरिजन। जो मैस्कट वाला एयरपोर्ट है इट इज लाइक 1 hour अवे, राइट, एंड ऑल्सो सिटी रूट पे है, सो देर इज जनरली मोर ट्रैफिक। ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑन द ऑपोजिट साइड, सो होपफुली लेसर ट्रैफिक दैन द सिटी वन।
7: सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए ही नहीं बल्कि फ्रेट के लिए भी ये एक बड़ा केंद्र बनता जाएगा। क्वांटस की CEO वैनेसा हडसन ने कहा है कि हर हफ्ते 850 टन से अधिक कार्गो इस नए टर्मिनल से गुजरेगा, जिससे ई कॉमर्स और तेज डिलीवरी सेवाओं का बड़ा फायदा मिलेगा। आइए एक नजर डालते हैं इस एयरपोर्ट के इतिहास पर। वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट की कहानी सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि ये कई दशकों की राजनीति, योजना और विवादों की कहानी है। इस एयरपोर्ट की अवधारणा 1940 के दशक में सामने आई थी, बाद में 1986 में बैडगरी स्क्रीज को इसके लिए चुना गया, लेकिन असली काम शुरू होने में कई साल लग गए। 2014 में जाकर आधिकारिक रूप से इसका निर्माण शुरू किया गया। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 5.3 मिलियन के शुरुआती बजट के भीतर पूरा किया गया है, जो इसे एक रेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सक्सेस बनाता है। लंबे समय तक हुए डीले के बाद हालांकि ये एयरपोर्ट समय पर तैयार हो रहा है, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी परियोजना मेट्रो रेल लिंक अभी भी देरी का सामना कर रही है। ये रेल लाइन जो एयरपोर्ट को शहर से जोड़ेगी, कहा जा रहा है कि 2028 तक ही पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस प्लान में अब कॉस्ट के बढ़ने का खतरा भी है, जो कि करीब 2.2 बिलियन तक और बढ़ सकती है। ऐसे में NSW सरकार और कॉन्ट्रैक्टर वी बिल्ट के बीच फंडिंग को लेकर तनाव भी देखा गया है। सरकार का कहना है कि वे अतिरिक्त लागत नहीं देगी, जबकि कंपनी ने काम की गति कम कर दी है। इसके अलावा जर्मन बिल्ट ड्राइवरलेस ट्रेन की डिलीवरी में देरी और सेंट मेरी स्टेशन पर बिजली की समस्याओं ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं। नए फ्लाइट पाथ्स को लेकर 2023 में ही स्थानीय समुदाय ने अपनी चिंताएं सामने रख दी थी। खासतौर पर ब्लू माउंटेन क्षेत्र के लोगों ने कहा था कि विमान शोर उनके जीवन और पर्यावरण, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पर असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के साथ आम तौर पर कुछ न कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय यानी सोशल या एनवायरमेंटल बहस से जुड़ी ही रहती हैं। हालांकि मयंक का मानना है कि ये जो विकास है, ये उनके शहर को बाकी शहरों से अलग बनाएगा।
9: ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर ग्रीन पर फोकस करता रहता है, कुछ ज्यादा चीजें बनती नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, लाइक नई चीजें दिखती है, लाइक दूर से दिख रहा है कि एयरपोर्ट्स है एंड ऑल है, क्योंकि जितने भी लोकल एरियाज हैं यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ग्रीनरी करकर। तो आई वुड से कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितने बन रहे हैं तो इट्स गुड।
7: तो ऐसे में इस एयरपोर्ट से हम क्या उम्मीद करें? क्वांटस ग्रुप की सीईओ वेनेसा हडसन ने भी कहा है कि ये एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी के लाखों लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा, जिन्हें अब तक उड़ान पकड़ने के लिए किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट तक लंबा सफर तय करना पड़ता था। साथ ही ये एयरपोर्ट सिर्फ उड़ानों का केंद्र ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न सिडनी के डेवलपमेंट, रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी का प्रतीक बनेगा। कई सारे लोगों के लिए ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत या रनवे नहीं है, ये एक लंबे इंतजार का अंत है, एक बड़े शहर के भविष्य की शुरुआत है और एक ऐसा कदम है जो सिडनी को वर्ल्ड एविएशन मैप पर और मजबूत करेगा। 25 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, कहा जा सकता है कि ये वेस्टर्न सिडनी के लिए सच में एक नई उड़ान की शुरुआत होगी। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
10: Thank you for watching. Hope to see you again soon.
0: तो आपने जाना है कि सिडनी के दूसरे एयरपोर्ट की बात क्या है। मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद में।
11: Landu gets lost in his office building.
12: Man, why does every floor look the same?
11: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
12: Man, getting lost out here is the best.
11: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
12: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
15: A lot of companies have rejected me.
16: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
17: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, इस पूरे हफ्ते आपने सुना किंग्स बर्थडे ऑनर्स में सम्मानित हुए अनेक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाईस को। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक युवा डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा से। ये मुलाकात आपसे करवा रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं स्वाति शर्मा।
19: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। इस साल के किंग्स बर्थडे ऑनर्स में ऑस्ट्रेलिया ने सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया है। इनमें एक लंबी कतार भारतीय मूल के लोगों की भी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देकर इस देश की कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हीं में है मेलबर्न के एक ऐसे डॉक्टर भी, जिनकी कहानी थोड़ी अलग है। मेडिसिन के कई रास्ते होते हैं और उनमें सर्जरी को अक्सर सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा ने सर्जरी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह रास्ता छोड़ दिया और जनरल प्रैक्टिस को चुना, यानी वही फैमिली डॉक्टर वाला काम जिसे लोग अक्सर कमतर समझते हैं। एक ऐसे परिवार से आते हैं वे जहां कई डॉक्टर हैं और उन्होंने मेडिसिन की सबसे कम चमक वाली शाखा चुनी और आज उसी में उन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM मिला है। यह सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है, यह उस चुनाव की कहानी भी है जो हम में से बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उनके प्रशस्ति पत्र में बस इतना लिखा है, दवा और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा के लिए। उस सादी सी लाइन के पीछे एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्जन के तौर पर ट्रेनिंग ली पर फिर रास्ता बदलने का फैसला किया। वह जॉइंट ऑस्ट्रेलियन GP ऑफ द ईयर हैं और विक्टोरिया के डॉक्टरों को रेगुलेट करने वाली बॉडी में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक हैं। और चूंकि डॉक्टर वर्मा का काम, उनके मरीज और उनकी दुनिया सब अंग्रेजी में चलती है, तो मैं यहाँ हिंदी से अंग्रेजी भाषा में स्विच कर रही हूँ। डॉक्टर अभिषेक वर्मा, वेलकम टू SBS एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन द मेडल। What was the feeling when you first found out that you're going to receive this medal?
20: Oh, thanks, Swati. It's a pleasure to be with you, and thank you so much for your kind words. To be honest, I was genuinely surprised and deeply humbled. I mean, I wasn't expecting it, and I've been very lucky and very fortunate to work alongside amazing colleagues, mentors, patients, and community members throughout my career. So for me, it was really surprising and humbling. But I guess, moreover, I think it reflected. It's really the efforts of many people who supported me along the way. It's not a particular achievement of mine.
19: Sure. So you'd finished a Master of Surgery and been accepted into two surgical training programs, General Surgery and ENT. That's the hard part done. But then you became a father and then walked away from all of it to become a GP. What was surgery not giving you that you went looking for in general practice?
20: Look, I mean, I loved the surgical practice. I love the teamwork. I love the fact that you're achieving tangible outcomes and delivering great quality care. But I think for me, there was the lifestyle consideration of being general practitioner is generally a little bit more lifestyle friendly. But also I could see from my colleagues who'd pivoted towards general practice that it offered them the opportunity to provide holistic care to families, many generations of people. And that's something that I think really resonated from my time as a medical student, and indeed even before I got into medicine, doing work experience with a GP. It was really positive experiences that stayed with me, and I think reinforced that decision to pivot away from a surgical career.
19: You once said that diagnosing something rare, a male breast cancer for instance, matters less to you than getting a good outcome for someone who'd normally never get near one. That's an unusual thing for a doctor to admit, I must say. Why does that distinction matter so much to you?
20: Yeah, look, it's a good question because, I mean, in general practice, I mean, the breadth of general practice is such that you see a lot of things, you know, the common things happen commonly. I've been lucky to see patients with really rare, unusual diagnoses that I've been able to contribute to. And I can think of a few. I can think of a patient with Gittleman syndrome, which is not something that's easy to pick up. A male patient with breast cancer, another patient with another rare autoimmune condition that I was able to help contribute to the diagnosis of. But for me, it's about outcomes, outcomes for patients, outcomes for families, and even small outcomes that have a demonstrable effect on their social and sort of psychological well-being. So for me, it's about how that individual and their community achieves their collective health outcomes, more so than making a spectacular rare diagnosis.
19: Mm-hmm. Abhishek, you've also described supporting people through poor mental health as the best part of your work. In a lot of migrant families, especially, mental health is still something you simply don't talk about. It's still very much a taboo. How do you get someone to that first honest conversation?
20: Great question. It's a great question because mental health does not discriminate. It affects everybody, every walk of life, every background. And we all have, as I said, different stories and different journeys that colour how we function as humans. I think it's about, again, providing a safe space for having a conversation and recognising that it's okay and acknowledging it's okay to have depression or to have thoughts of not wanting to feel like you're, you know, achieving what you are seeking to achieve or not feeling worthwhile. I think recognising that mental health, you know, is something that shouldn't be stigmatised but needs to be discussed. That's the only way to, I guess, just further that dialogue. So I try to create a safe space and recognise that everybody, you know, regardless of position or background, can be affected by mental health issues in any stage of life. And we need to encourage those conversations because it's only through that we move forward.
19: Mm. Abhishek, you also sit on Victorian Medical Board and you examine the doctors coming through. So you see the pipeline better than almost anyone. And only about 17% of new graduates want to be GPs. What do you think is kind of pushing them out?
20: It's a great question. And look, as I said to you, I mean, my initial disposition in my own career trajectory was not general practice. It was to pursue a surgical career. I think for a lot of them, it's the fact that they do in their early years of their training, it is very much hospital-based. And so they don't get exposure to what general practice is. And the lack of exposure also sometimes breeds contempt, because they think, well, general practice is a lower sort of professional pursuit than, if say, a subspecialty such as cardiology or surgery. And so I think that's a big issue within it. I think the lack of exposure to general practice. But moreover, I think it's the fact that general practice has been, by and large, you know, traditionally underfunded for many, many, many years, and it hasn't probably had the same uplift in remuneration levels that you would see across other specialties and professions. I think that also has contributed to there being, a lack of subscription to general practice as a career.
19: All right. My last question to you, Abhishek. You come from a family of doctors, and out of every path open to you, you pick the one with the least glory attached to it, generally speaking. And now there's a medal. So if a young person from a migrant family is sitting out there wondering whether the useful but unglamorous path is worth taking, what would you tell them?
20: Look, I mean, I think it's, you know, for me, you know, it's not really about glamour. It's about adding value to people and making sure that what you do in terms of work is meaningful. And I think we're lucky in any medical profession. We can help people through some of the most important moments of their lives. And so for me, I would encourage people, whether you want to become a GP, whether you want to become another medical specialist, or indeed another sort of type of caring profession, just add value, seek to add value, do something meaningful, and just, you know, aim to focus on service, kindness, and I think contributing to community, and the rest will take care of itself.
19: Abhishek, you've made the case for the kind of medicine that doesn't usually get a medal, but clearly the case has landed. Thank you for your time today, and congratulations again on the EOAM.
20: I appreciate your kind words. Thank you so much, Swati. It's nice to talk to you.
19: This is Swati Sharma on SBS Hindi, and that was Dr. Abhishek Verma.
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे बातचीत युवा डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा के साथ में, जिन्हें इस वर्ष किंग्स बर्थडे ऑनर में सम्मानित किया गया OAM से. सभी उन कला व्यक्तियों की जो यात्रा होती है वो बहुत ही प्रेरणादायक होती है, और इसीलिए उनको किसी न किसी तरह से सम्मानित तो कर दिया जाता है. और मैं बात कर रही थी आज 80 के दशक की, एक सुनहरा बदलाव वाला दशक था. आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी जैसे मशहूर कंपोजर्स ने उस दौर को एक पहचान दी थी, और चार्ट टॉपिंग साउंड ट्रैक बनाए थे. एक नए तरह से रोमांटिक हिट्स का जन्म हुआ था, जैसे कि इस गाने का।

समय भागता गया और देखिए बिल्कुल कार्यक्रम की समाप्ति पर हम पहुंच गए। आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूं, चाहे अधूरा है ये, और आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में। अनीता बरार का नमस्कार।

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood Session on SBS South Asian.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Here we go again.
1: Ready?
2: Here it comes. Hours and hours of the most pumping hits for your weekend. Desi Dance Party on SBS South Asian.
3: आ गए ना सब पार्टी में, अब खींच रहे फोटो किस सिक करके।

0: देसी डांस पार्टी ऑन SBS साउथ एशियन।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

0: चप्पण च नक डुब तू मार शर्म नहीं आंदी तेन तू मार सारे आंदी टंग तू तक खिचे बड़ा ही बशर्म है तू
1: ओके
0: बड़ा ही बशर्म है तू।

कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सारा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेत की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक सभी को फिर से नरम।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

मेरे अगे जो बनती सी वैसे तो वो नहीं सी। आ दिल तेरा इन्ना काला तू कदे कीता मैनू शो नहीं सी। चल ठीक है जिमें भी हाँ गल मुक्की चंगी है। आ तेरे अर्गी नालों तो यारी टुटी चंगी है, यारी टुटी चंगी है।

है कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: Hello, sir.
3: मेरी गल सुन अपने घरे चुप करके मेनू दस गई।

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं, क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: ए राजा बजाना।

0: हमारी बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद। खाना खाके जाइएगा।
1: Party hits for the weekend. Desi Dance Party on SBS South Asian.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: SBS South Asian, your news from here and hits from home.

सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार राता में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

0: SBS South Asian.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।